0: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I'm Lucy Gabriel, and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with
1: the National Highways Authority of India, NHAI, Ministry of Road Transport and Highways, Government of India, has invited applications for recruitment to various posts on deputation basis. The vacancies include General Manager Legal, General Manager Transport Planner, General Manager Transport Economist, General Manager Environment, General Manager Electronics, General Manager Information Technology and Deputy General Manager Information Technology. The number of posts indicated in the advertisement includes 2 posts for General Manager Transport Planner, 1 of General Manager Transport Economist, 1 post of General Manager Environment, 1 post of General Manager Electronics and 1 of General Manager Legal, 2 posts of General Manager Information Technology and 4 of Deputy General Manager Information Technology, subject to increase or decrease according to NHAI requirements. The posts carry level 13 as per the 7 CPC and level 12. Candidates are required to submit their applications online in accordance with the procedure specified in the detailed advertisement available on the NHAI website. And the last date for submission of applications is 18 September 2026 by 6 p.m. Details regarding age limit, eligibility criteria, terms and conditions and other requirements are available on the NHAI website. Candidates are advised to regularly check the NHAI website for corrigendum, addendum and cancellations relating to the recruitment. For details, refer to www.nhai.gov.in. The Homi Bhabha Center for Science Education, HBCSE, a national center of the Tata Institute of Fundamental Research, TIFR, Mumbai, has invited applications for permanent and temporary posts. The permanent position is that of a Scientific Assistant B, for which one post is reserved for EWS. The post carries pay level 6. Pay stage 1 with a maximum age limit of 28 years. The temporary positions include project assistant and clerk trainee with one unreserved post. The project assistant position carries an honorarium of 41,100 per month including HRA, while the clerk trainee position carries a stipend of 22,000 rupees per month. The maximum age limit for these temporary positions is 28 years. The last date for submitting applications online is 19 September 2026. The selection process is scheduled for 22nd September 2026 and 23rd September, as applicable to the respective posts. Candidates should refer to the detailed advertisement for educational qualifications, eligibility, selection procedure, and other conditions. Further details available on the HBCSE website. Kindly refer to www.hbcse.tifr.res.in. The Paradip Port Authority, PPA, invites applications from Indian nationals for 2 posts of Deputy Chief Medical Officer Specialist to direct recruitment with 1 post each in medicine and surgery. The post carries pay scale of 60,000 to 1,80,000 and has an upper age limit of 42,000 as on 1st August 2026. Applications in the prescribed format along with self-attested supporting documents and photographs should reach the Secretary, Paradip Port Authority, District Jagatsingpur, Odisha 754142 by registered post on or before 16 September 2026. Government employees should apply through proper channel and produce an NOC at the time of interview. Selection will be made as per the prescribed selection criteria. For details, do refer to the website at www.paradipport.gov.in.
0: And now we have the employment news in Hindi.
2: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल नगरोटा जम्मू आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान, वार्ड बॉय, बैंड मास्टर, PEM, PTI सह मैट्रन महिला और काउंसलर, ये सभी पद अनुबंध के आधार पर भरे जाने हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.sainikschoolnagrota.com। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति आमंत्रित कर रही है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता 4 पद, पर्यावरण अभियंता 2 पद, सहायक पर्यावरण अभियंता 11 पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए रोजगार समाचार पत्र की 5 सितंबर 2026 से 11 सितंबर 2026 की प्रति। HIL इंडिया लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। अतिरिक्त महाप्रबंधक वित्त 1 रिक्ति, प्रबंधक विपणन 5 रिक्तियां, प्रबंधक वित्त 1 रिक्ति, प्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासन 2 रिक्तियां तथा प्रबंधक विद्युत अभियांत्रिकी 1 रिक्ति। विस्तार निदेशालय आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। फोटोग्राफिक अधिकारी 1 रिक्ति, ज्येष्ठ अनुवादक 1 रिक्ति, सहायक विस्तार अधिकारी 1 रिक्ति, आशुलिपिक ग्रेड 1 3 रिक्तियां, फोटोग्राफर 2 रिक्तियां, उच्च श्रेणी लिपिक 9 रिक्तियां तथा स्टाफ कार ड्राइवर 1 रिक्ति। इन पदों से संबंधित विस्तृत जानकारियों के लिए देखिए विस्तार निदेशालय की वेबसाइट www.agriwelfare.nic.in तथा www.krishivistar.gov.in। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC को आवश्यकता है वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता तथा सहायक पर्यावरण अभियंता की। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए 5 सितंबर से 11 सितंबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र। पत्तन प्रबंधन बोर्ड अंडमान एवं निकोबार प्रशासन श्री विजयपुरम में अनुबंध के आधार पर एक पायलट अधिकारी की नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार देख सकते हैं वेबसाइट www.andamannicobar.gov.in। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान आमंत्रित कर रहा है प्रोफेसर के 9 पदों, एसोसिएट प्रोफेसर के 7 पदों और असिस्टेंट प्रोफेसर के 43 पदों के लिए आवेदन। निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं, अनुभव, आवेदन शुल्क, अन्य विवरण एवं अद्यतन जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट cihts.ac.in/recruitment। प्रशिक्षण महानिदेशालय को आवश्यकता है एक अपर डिवीजन क्लर्क UDC की तथा एक लेखाकार खरीद सहायक की। इन पदों से संबंधित शैक्षणिक योग्यताओं, अनुभव आदि की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है इस वेबसाइट पर, जिसका पता है www.rdsdegujarat.dgt.gov.in। वेबसाइट का पता एक बार फिर से सुन लीजिए www.rdsdegujarat.dgt.gov.in। महानिदेशालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस आमंत्रित कर रहा है भारतीय नागरिकों से डिप्टी कमांडेंट ट्रांसपोर्ट के 3 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए आवेदन। इन पदों से संबंधित नियम, शर्तों, अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, पात्रता मानदंड आदि की जानकारी के लिए देखिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस की वेबसाइट www.itbpolice.nic.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं।
3: The early years of life determine how much a child will develop mentally and how far they will progress in life. At our Anganwadis, children grow and develop with proper nutrition, plenty of love, fresh hot meals and learning through play. At the same time, under the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, the eligible financial assistance is being deposited directly into mothers' bank accounts, ensuring safe motherhood. With the resolve of Hamari Anganwadi, Hamari Zimmedari, The 9th Rashtriya Poshan Maah is being celebrated from 9th September 2026 to 8th October 2026.
4: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है.
3: कनेक्ट विद योर नियरेस्ट आंगनबाड़ी टुडे बिकॉज हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी.
5: మహాభారతంలో మహనీయులు మన శుభోదయ స్వరాలులో ప్రతిరోజు ఉదయం 6 గంటల నుండి 7 గంటల వరకు
6: ఓన్లీ ఆన్ మన మిక్స్ 90.8 కమ్యూనిటీ రేడియోలో.

0: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel, and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with the National Highways Authority of India, NHAI, Ministry of Road Transport and Highways, Government of India, has invited applications for recruitment to various posts on deputation basis. The vacancies include General Manager Legal, General Manager Transport Planner, General Manager Transport Economist, General Manager Environment, General Manager Electronics, General Manager Information Technology and Deputy General Manager Information Technology. The number of posts indicated in the advertisement includes 2 posts for General Manager Transport Planner, 1 of General Manager Transport Economist, 1 post of General Manager Environment, 1 post of General Manager Electronics and 1 of General Manager Legal, 2 posts of General Manager Information Technology and 4 of Deputy General Manager Information Technology, subject to increase or decrease according to NHAI requirements. The posts carry level 13 as per the 7 CPC and level 12. Candidates are required to submit their applications online in accordance with the procedure specified in the detailed advertisement available on the NHAI website. And the last date for submission of applications is 18 September 2026 by 6 p.m. Details regarding age limit, eligibility criteria, terms and conditions and other requirements are available on the NHAI website. Candidates are advised to regularly check the NHAI website for corrigendum, addendum and cancellations relating to the recruitment. For details, refer to www.nhai.gov.in. The Homi Bhabha Center for Science Education, HBCSE, a national center of the Tata Institute of Fundamental Research, TIFR, Mumbai, has invited applications for permanent and temporary posts. The permanent position is that of a scientific assistant B, for which 1 post is reserved for EWS. The post carries pay level 6, pay stage 1 with a maximum age limit of 28 years. The temporary positions include project assistant and clerk trainee with 1 unreserved post. The project assistant position carries an honorarium of 41,100 per month including HRA, while the clerk trainee position carries a stipend of 22,000 rupees per month. The maximum age limit for these temporary positions is 28 years. The last date for submitting applications online is 19 September 2026. The selection process is scheduled for 22nd September 2026 and 23rd September as applicable to the respective posts. Candidates should refer to the detailed advertisement for educational qualifications, eligibility, selection procedure and other conditions. Further details available on the HBCSE website. Kindly refer to www.hbcse.tifr.res.in. The Paradip Port Authority, PPA, invites applications from Indian nationals for 2 posts of Deputy Chief Medical Officer Specialist through direct recruitment with 1 post each in medicine and surgery. The post carries pay scale of 60,000 to 1,80,000 and has an upper age limit of 42,000 as on 1st August 2026. Applications in the prescribed format along with self-attested supporting documents and photographs should reach the Secretary, Paradip Port Authority, District Jagatsinghpur, Odisha, 75 4142 by registered post on or before 16 September 2026. Government employees should apply through proper channel and produce an NOC at the time of interview. Selection will be made as per the prescribed selection criteria. For details, do refer to the website at www.paradipport.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल नगरोटा जम्मू आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान, वार्ड बॉय, बैंड मास्टर, PEM, PTI सह मैट्रन महिला और काउंसलर, ये सभी पद अनुबंध के आधार पर भरे जाने हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.sainikschoolnagrota.com। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति आमंत्रित कर रही है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता 4 पद, पर्यावरण अभियंता 2 पद, सहायक पर्यावरण अभियंता 11 पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए रोजगार समाचार पत्र की 5 सितंबर 2026 से 11 सितंबर 2026 की प्रति। HIL इंडिया लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। अतिरिक्त महाप्रबंधक वित्त 1 रिक्ति, प्रबंधक विपणन 5 रिक्तियां, प्रबंधक वित्त 1 रिक्ति, प्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासन 2 रिक्तियां तथा प्रबंधक विद्युत अभियांत्रिकी 1 रिक्ति। विस्तार निदेशालय आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। फोटोग्राफिक अधिकारी 1 रिक्ति, ज्येष्ठ अनुवादक 1 रिक्ति, सहायक विस्तार अधिकारी 1 रिक्ति, आशुलिपिक ग्रेड 1 3 रिक्तियां, फोटोग्राफर 2 रिक्तियां, उच्च श्रेणी लिपिक 9 रिक्तियां तथा स्टाफ कार ड्राइवर 1 रिक्ति। इन पदों से संबंधित विस्तृत जानकारियों के लिए देखिए विस्तार निदेशालय की वेबसाइट www.agriwelfare.nic.in तथा www.krishivistar.gov.in। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC को आवश्यकता है वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता तथा सहायक पर्यावरण अभियंता की। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए 5 सितंबर से 11 सितंबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र। पत्तन प्रबंधन बोर्ड अंडमान एवं निकोबार प्रशासन श्री विजयपुरम में अनुबंध के आधार पर एक पायलट अधिकारी की नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार देख सकते हैं वेबसाइट www.andamannicobar.gov.in। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान आमंत्रित कर रहा है प्रोफेसर के 9 पदों, एसोसिएट प्रोफेसर के 7 पदों और असिस्टेंट प्रोफेसर के 43 पदों के लिए आवेदन। निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं, अनुभव, आवेदन शुल्क, अन्य विवरण एवं अद्यतन जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट cihts.ac.in/recruitment। प्रशिक्षण महानिदेशालय को आवश्यकता है एक अपर डिवीजन क्लर्क UDC की तथा एक लेखाकार खरीद सहायक की। इन पदों से संबंधित शैक्षणिक योग्यताओं, अनुभव आदि की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है इस वेबसाइट पर, जिसका पता है www.rdsdegujarat.dgt.gov.in। वेबसाइट का पता एक बार फिर से सुन लीजिए www.rdsdegujarat.dgt.gov.in। महानिदेशालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस आमंत्रित कर रहा है भारतीय नागरिकों से डिप्टी कमांडेंट ट्रांसपोर्ट के 3 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए आवेदन। इन पदों से संबंधित नियम, शर्तों, अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, पात्रता मानदंड आदि की जानकारी के लिए देखिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस की वेबसाइट www.itbpolice.nic.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं।
2: The early years of life determine how much a child will develop mentally and how far they will progress in life. At our Anganwadis, children grow and develop with proper nutrition, plenty of love, fresh hot meals and learning through play. At the same time, under the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, the eligible financial assistance is being deposited directly into mothers' bank accounts, ensuring safe motherhood. With the resolve of Hamari Anganwadi, Hamari Zimmedari, The 9th Rashtriya Poshan Maah is being celebrated from 9th September 2026 to 8th October 2026.
3: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है.
2: Connect with your nearest Anganwadi today because हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी.
4: మహాభారతంలో మహనీయులు మన శుభోదయ స్వరాలులో ప్రతిరోజు ఉదయం 6 గంటల నుండి 7 గంటల వరకు
5: ఓన్లీ మన మిక్స్ 90.8 కమ్యూనిటీ రేడియోలో.

मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। एक लंबे अंतराल के बाद फिर से एक बार आप सबके बीच मन की बात, जन की बात, जन जन की बात, जन मन की बात, इसका हम सिलसिला प्रारंभ कर रहे हैं। चुनाव की आपाधापी में व्यस्तता तो बहुत थी, लेकिन मन की बात का जो मजा है वो गायब था। एक कमी महसूस कर रहा था। अपनों के बीच बैठ के हल्के फुलके माहौल में 130 करोड़ देशवासियों के परिवार के एक स्वजन के रूप में कई बातें सुनते थे, दोहराते थे, और कभी कभी अपनी ही बातें अपनों के लिए प्रेरणा बन जाती थी। अब कल्पना कर सकते हैं कि बीच का कालखंड गया होगा, कैसा गया होगा। रविवार, आखिरी रविवार 11 बजे, मुझे भी लगता था कि अरे कुछ छूट गया। आपको भी लगता था ना, जरूर लगता होगा। शायद ये कोई निर्जीव कार्यक्रम नहीं था, इस कार्यक्रम में एक जीवंतता थी, अपनापन था, मन का लगाव था, दिलों का जुड़ाव था। और इसके कारण बीच का जो समय गया वो समय बहुत कठिन लगा मुझे। मैं हर पल कुछ मिस कर रहा था। और जब मैं मन की बात करता हूं तब बोलता भले मैं हूं, शब्द शायद मेरे हैं, आवाज मेरी है, लेकिन कथा आपकी।

पुरुषार्थ आपका है, पराक्रम आपका है। मैं तो सिर्फ मेरे शब्द मेरी वाणी का उपयोग करता था और इसके कारण मैं इस कार्यक्रम को नहीं आपको मिस कर रहा था, एक खालीपन महसूस कर रहा था। एक बार तो मन कर गया था चुनाव समाप्त होते ही तुरंत ही आपके बीच चला हूं, लेकिन फिर लगा नहीं वो संडे वाला क्रम बना रहना चाहिए, लेकिन इस संडे ने बहुत इंतजार करवाया। खैर आखिर मौका मिल ही गया है। एक पारिवारिक माहौल में मन की बात छोटी छोटी हल्की फुल्की समाज जीवन में जो बदलाव का कारण बनती है, एक प्रकार से उसका ये सिलसिला एक नए स्पिरिट को जन्म देता हुआ और एक प्रकार से न्यू इंडिया के स्पिरिट को सामर्थ्य देता हुआ ये सिलसिला आगे बढ़े। कई सारे संदेश पिछले कुछ महीनों में आए हैं जिसमें लोगों ने कहा कि वो मन की बात को मिस कर रहे हैं। जब मैं पढ़ता हूँ सुनता हूँ मुझे अच्छा लगता है, मैं अपनापन महसूस करता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है मेरी स्व से समष्टि की यात्रा है, ये मेरी अहम से वयम की यात्रा है। मेरे लिए आपके साथ मेरा ये मौन संवाद एक प्रकार से मेरी स्पिरिचुअल यात्रा की अनुभूति का भी अंश था। कई लोगों ने मुझे चुनाव की आपाधापी में मैं केदारनाथ क्यों चला गया बहुत सारे सवाल पूछे हैं। आपका हक है, आपकी जिज्ञासा भी मैं समझ सकता हूं और मुझे भी लगता है कभी मेरे उन भावों को आप तक कभी पहुंचाऊं, लेकिन आज मुझे लगता है कि अगर मैं उस दिशा में चल पड़ूंगा तो शायद मन की बात का रूप ही बदल जाएगा। और इसलिए चुनाव की उस आपाधापी जय पराजय के अनुमान, अभी पोलिंग भी बाकी था और मैं चल पड़ा। ज्यादातर लोगों ने उसमें से राजनीतिक अर्थ निकाले, मेरे लिए मुझसे मिलने का वो अवसर था। एक प्रकार से मैं मुझे मिलने चला गया था। मैं और बातें तो आज नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर करूंगा कि मन की बात के इस अल्प विराम के कारण जो खालीपन था केदार की घाटी में, उस एकांत गुफा में, शायद उसने कुछ भरने का अवसर जरूर दिया था। बाकी आपकी जिज्ञासा है, सोचता हूं कभी उसकी भी चर्चा करूंगा, कब करूंगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन करूंगा जरूर, क्योंकि आपका मुझ पर हक बनता है। जैसे केदार के विषय में लोगों ने जानने की इच्छा व्यक्त की है, वैसे एक सकारात्मक चीजों को बल देने का आपका प्रयास आपकी बातों में लगातार मैं महसूस करता हूं। मन की बात के लिए जो चिट्ठियां आती है, जो इनपुट प्राप्त होते हैं, वो रूटीन सरकारी कामकाज से बिल्कुल अलग होते हैं। एक प्रकार से आपकी चिट्ठी भी मेरे लिए कभी प्रेरणा का कारण बन जाती है तो कभी ऊर्जा का कारण बन जाती है। कभी कभी तो मेरी विचार प्रक्रिया को धार देने का काम आपके कुछ शब्द कर देते हैं। लोग देश और समाज के सामने खड़ी चुनौतियों को सामने रखते हैं तो उसके साथ साथ समाधान भी बताते हैं। मैंने देखा है कि चिट्ठियों में लोग समस्याओं का तो वर्णन करते ही है, लेकिन ये भी विशेषता है कि साथ साथ समाधान का भी कुछ न कुछ सुझाव, कुछ न कुछ कल्पना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में प्रकट कर देते हैं। अगर कोई स्वच्छता के लिए लिखता है तो गंदगी के प्रति उसकी नाराजगी तो जताता है, लेकिन स्वच्छता के प्रयासों की सराहना भी करता है। कोई पर्यावरण की चर्चा करता है तो उसकी पीड़ा तो महसूस होती है, लेकिन साथ साथ उसने खुद ने जो प्रयोग किए हैं वो भी बताता है, जो प्रयोग उसने देखे हैं वो भी बताता है और जो कल्पनाएं उसके मन में है वो भी चित्रित करता है। यानी एक प्रकार से समस्याओं का समाधान समाज व्यापी कैसे हो, इसकी झलक आपकी बातों में मैं महसूस करता हूं। मन की बात देश और समाज के लिए एक आईने की तरह है। यह हमें बताता है कि देशवासियों के भीतर अंदरूनी मजबूती, ताकत और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जरूरत है उन मजबूतियों और टैलेंट को समाहित करने की, अवसर प्रदान करने की, उसको क्रियान्वित करने की। मन की बात ये भी बताता है कि देश की तरक्की में सारे 130 करोड़ देशवासी मजबूती और सक्रियता से जुड़ना चाहते हैं। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, मन की बात में मुझे इतनी चिट्ठियां आती हैं, इतने टेलीफोन कॉल आते हैं, इतने संदेश मिलते हैं, लेकिन शिकायत का तत्व बहुत कम होता है। और किसी ने कुछ मांगा हो, अपने लिए मांगा हो, ऐसी तो एक भी बात गत 5 वर्ष में मेरे ध्यान में नहीं आई है। आप कल्पना कर सकते हैं
देश के प्रधानमंत्री को कोई चिट्ठी लिखे लेकिन खुद के लिए कुछ मांगे नहीं, इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं कितनी ऊंची होगी। मैं जब इन चीजों को एनालिसिस करता हूं, आप कल्पना कर सकते हैं मेरे दिल को कितना आनंद आता होगा, मुझे कितनी ऊर्जा मिलती होगी। आपको कल्पना नहीं है कि आप मुझे चलाते हैं, आप मुझे दौड़ाते हैं, आप मुझे पल पल प्राणवान बनाते रहते हैं, और यही नाता मैं कुछ मिस करता था। आज मेरा मन खुशियों से भरा हुआ है। जब मैंने आखिर में कहा था कि हम 3-4 महीने के बाद मिलेंगे, तो लोगों ने उसके भी राजनीतिक अर्थ निकाले थे, और लोगों ने कहा अरे मोदी जी का कितना कॉन्फिडेंस है, उनको भरोसा है। कॉन्फिडेंस मोदी का नहीं था, ये विश्वास आपके विश्वास के फाउंडेशन का था। आप ही थे जिसने विश्वास का रूप लिया था, और इसी के कारण सहज रूप से आखिरी मन की बात में मैंने कह दिया था कि मैं कुछ महीनों के बाद फिर से आपके पास आऊंगा। एक्चुअली मैं आया नहीं हूं, आपने मुझे लाया है, आपने ही मुझे बिठाया है, और आपने ही मुझे फिर से एक बार बोलने का अवसर दिया है। इसी भावना के साथ चलिए मन की बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जब देश में आपातकाल लगाया गया, तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था, राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था, जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था। जन जन के दिल में एक आक्रोश था, खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी। दिन रात जब समय पर खाना खाते हैं तब भूख क्या होती है इसका पता नहीं होता है, वैसे ही सामान्य जीवन में लोकतंत्र के अधिकारों की क्या मजा है वो तो तब पता चलता है जब कोई लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लेता है। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया है, जिसका उसने जीवन में कभी उपयोग नहीं किया था वो भी अगर छीन गया है तो उसका एक दर्द उसके दिल में था। और ये इसलिए नहीं था कि भारत के संविधान ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं जिसके कारण लोकतंत्र पनपा है। समाज व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की भी जरूरत होती है, कायदे कानून नियमों की भी आवश्यकता होती है, अधिकार और कर्तव्य की भी बात होती है, लेकिन भारत गर्व के साथ कह सकता है कि हमारे लिए कानून नियमों से परे लोकतंत्र हमारे संस्कार है, लोकतंत्र हमारी संस्कृति है, लोकतंत्र हमारी विरासत है, और उस विरासत को लेकर के हम पले बड़े लोग हैं, और इसलिए उसकी कमी देशवासी महसूस करते हैं, और आपातकाल में हमने अनुभव किया था। और इसीलिए देश अपने लिए नहीं, एक पूरा चुनाव अपने हित के लिए नहीं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आहूत कर चुका था। शायद दुनिया के किसी देश में वहां के जन जन ने लोकतंत्र के लिए अपने बाकी हकों के अधिकारों की आवश्यकताओं की परवाह न करते हुए सिर्फ लोकतंत्र के लिए मतदान किया हो, तो ऐसा एक चुनाव इस देश ने 77 में देखा था। हाल ही में लोकतंत्र का महापर्व बहुत बड़ा चुनाव अभियान हमारे देश में संपन्न हुआ। अमीर से लेकर गरीब सभी लोग इस पर्व में खुशी से हमारे देश के भविष्य का फैसला करने के लिए तत्पर थे। जब कोई चीज हमारे बहुत करीब होती है तो हम उसके महत्व को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, उसके अमेजिंग फैक्ट्स भी नजरअंदाज हो जाते हैं। हमें जो बहुमूल्य लोकतंत्र मिला है उसे हम बहुत आसानी से ग्रांटेड मान लेते हैं, लेकिन हमें स्वयं को यह याद दिलाते रहना चाहिए कि हमारा लोकतंत्र बहुत ही महान है, और इस लोकतंत्र को हमारी रगों में जगह मिली है सदियों की साधना से, पीढ़ी दर पीढ़ी के संस्कारों से, एक विशाल व्यापक मन की अवस्था से। भारत में 2019 के लोकसभा चुनाव में 61 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट दिया, 61 करोड़। यह संख्या हमें बहुत ही सामान्य लग सकती है, लेकिन अगर दुनिया के हिसाब से मैं कहूं, अगर एक चीन को हम छोड़ दें, तो भारत में दुनिया के किसी भी देश की आबादी से ज्यादा लोगों ने वोटिंग किया था। जितने मतदाताओं ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट दिया उनकी संख्या अमेरिका की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है, करीब दोगुनी है। भारत में कुल मतदाताओं की जितनी संख्या है वह पूरे यूरोप की जनसंख्या से भी ज्यादा है। यह
हमारे लोकतंत्र की विशालता और व्यापकता का परिचय कराती है। 2019 का लोकसभा का चुनाव अब तक के इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव था। आप कल्पना कर सकते हैं इस प्रकार के चुनाव संपन्न कराने में कितने बड़े स्तर पर संसाधनों और मानव शक्ति की आवश्यकता हुई होगी। लाखों शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की दिन रात मेहनत से चुनाव संभव हो गया। लोकतंत्र के इस महायज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जहां अर्धसैनिक बलों के करीब 3 लाख सुरक्षा कर्मियों ने अपना दायित्व निभाया, वहीं अलग अलग राज्यों के 20 लाख पुलिसकर्मियों ने भी परिश्रम की पराकाष्ठा की। इन्हीं लोगों की कड़ी मेहनत के फलस्वरूप इस बार पिछली बार से भी अधिक मतदान हो गया। मतदान के लिए पूरे देश में करीब 10 लाख पोलिंग स्टेशन, करीब 40 लाख से ज्यादा ईवीएम मशीन, 17 लाख से ज्यादा वीवीपैट मशीन, आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा तामझाम। ये सब इसलिए किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो। अरुणाचल प्रदेश के एक रिमोट इलाके में महज एक महिला मतदाता के लिए पोलिंग स्टेशन बनाया गया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को वहां पहुंचने के लिए 2-2 दिन तक यात्रा करनी पड़ी। यही तो लोकतंत्र का सच्चा सम्मान है। दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र भी भारत में ही है। यह मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा इस चुनाव में गर्व से भर देने वाला एक और तथ्य भी है। शायद इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि महिलाओं ने पुरुषों की तरह ही उत्साह से मतदान किया है। इस चुनाव में महिलाओं और पुरुषों का मतदान प्रतिशत करीब करीब बराबर था। इसी से जुड़ा एक और उत्साहवर्धक तथ्य यह है कि आज संसद में रिकॉर्ड 78 महिला सांसद है। मैं चुनाव आयोग को और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को बहुत बहुत बधाई देता हूं और भारत के जागरूक मतदाताओं को नमन करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा, बुके नहीं बुक। मेरा आग्रह था कि क्या हम स्वागत सत्कार में फूलों के बजाय किताबें दे सकते हैं। तब से काफी जगह लोग किताबें देने लगे हैं। मुझे हाल ही में किसी ने प्रेमचंद की लोकप्रिय कहानियां नाम की पुस्तक दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि बहुत समय तो नहीं मिल पाया, लेकिन प्रवास के दौरान मुझे उनकी कुछ कहानियां फिर से पढ़ने को मौका मिल गया। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में समाज का जो यथार्थ चित्रण किया है, पढ़ते समय उसकी छवि आपके मन में बनने लगती है। उनकी लिखी एक एक बात जीवंत हो उठती है। सहज सरल भाषा में मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने वाली उनकी कहानियां मेरे मन को भी छू गई। उनकी कहानियों में समूचे भारत का मनोभाव समाहित है। जब मैं उनकी लिखी नशा नाम की कहानी पढ़ रहा था तो मेरा मन अपने आप ही समाज में व्याप्त आर्थिक विषमताओं पर चला गया। मुझे अपनी युवावस्था के दिन याद आ गए कि कैसे इस विषय पर रात रात भर बहस होती थी। जमींदार के बेटे ईश्वरी और गरीब परिवार के वीर की इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर आप सावधान नहीं हैं तो बुरी संगति का असर कब चढ़ जाता है पता ही नहीं लगता है। दूसरी कहानी जिसने मेरे दिल को अंदर तक छू लिया वह थी ईदगाह। एक बालक की संवेदनशीलता, उसका अपनी दादी के लिए विशुद्ध प्रेम, उतनी छोटी उम्र में इतना परिपक्व भाव। 4-5 साल का हामिद जब मेले से चिमटा लेकर अपनी दादी के पास पहुंचता है तो सच मायने में मानवीय संवेदना अपने चरम पर पहुंच जाती है। इस कहानी की आखिरी पंक्ति बहुत ही भावुक करने वाली है क्योंकि उसमें जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया आमीना बालिका अमीना बन गई थी। ऐसी ही एक बड़ी मार्मिक कहानी है पुस्की रात। इस कहानी में गरीब किसान जीवन की विडंबना का सजीव चित्रण देखने को मिला। अपनी फसल नष्ट होने के बाद भी हल्दू किसान इसलिए खुश होता है क्योंकि अब उसे कड़ाके की ठंड में खेत में नहीं सोना पड़ेगा। हालांकि ये कहानियां लगभग सदी भर पहले की हैं, लेकिन इनकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही महसूस होती है। इन्हें पढ़ने के बाद
मुझे एक अलग प्रकार की अनुभूति हुई है।

0: जब पढ़ने की बात हो रही है तभी किसी मीडिया में मैं केरल की अक्षरा लाइब्रेरी के बारे में पढ़ रहा था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लाइब्रेरी इडुक्की के घने जंगलों के बीच बसे एक गांव में है। यहाँ के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पी के मुरलीधरन और छोटी सी चाय की दुकान चलाने वाले पी वी चिन्नाथम्पी, इन दोनों ने इस लाइब्रेरी के लिए अथक परिश्रम किया है। एक समय ऐसा भी रहा जब गट्ठर में भरकर और पीठ पर लादकर यहाँ पुस्तकें लाई गई। आज ये लाइब्रेरी आदिवासी बच्चों के साथ हर किसी को एक नई राह दिखा रही है। गुजरात में वांचे गुजरात अभियान का सफल प्रयोग रहा। लाखों की संख्या में हर आयु वर्ग के व्यक्ति ने पुस्तक पढ़ने के इस अभियान में हिस्सा लिया था। आज की डिजिटल दुनिया में, गूगल गुरु के समय में, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय निकालकर अपने डेली रूटीन में किताब को भी जरूर स्थान दें। आप सचमुच में बहुत एंजॉय करेंगे और जो भी पुस्तक पढ़े उसके बारे में नरेंद्र मोदी ऐप पर जरूर लिखें, ताकि मन की बात के सारे श्रोता भी उसके बारे में जान पाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश के लोग उन मुद्दों के बारे में सोच रहे हैं जो न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य के लिए भी बड़ी चुनौती है। मैं नरेंद्र मोदी ऐप और माई गॉव पर आपके कमेंट्स पढ़ रहा था और मैंने देखा कि पानी की समस्या को लेकर कई लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। बेलगावी के पवन गोराई, भुवनेश्वर के सितांशु मोहन परिदा, इसके अलावा यश शर्मा, साहब अल्ताफ और भी कई लोगों ने मुझे पानी से जुड़ी चुनौतियों के बारे में लिखा है। पानी का हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है। ऋग्वेद के आपः सूक्तम में पानी के बारे में कहा गया है, आपो हिष्ठा मयो भुवः स्थान ऊर्जे दधातन महे रणाय चक्षसे यो शिव तमो रसः तस्य भाजयतेह न उषतीरिव मातरः। अर्थात जल ही जीवनदायिनी शक्ति ऊर्जा का स्रोत है। आप माँ के समान यानी मातृवत अपना आशीर्वाद दें, अपनी कृपा हम पर बरसाते रहें। पानी की कमी से देश के कई हिस्से हर साल प्रभावित होते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि साल भर में वर्षा से जो पानी प्राप्त होता है उसका केवल 8% हमारे देश में बचाया जाता है, सिर्फ 8%। अब समय आ गया है इस समस्या का समाधान निकाला जाए। मुझे विश्वास है हम दूसरी और समस्याओं की तरह ही जन भागीदारी से, जन शक्ति से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य, सहयोग और संकल्प से इस संकट का भी समाधान कर लेंगे। जल की महत्ता को सर्वोपरि रखते हुए देश में नया जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। इससे पानी से संबंधित सभी विषयों पर तेजी से फैसले लिए जा सकेंगे। कुछ दिन पहले मैंने कुछ अलग करने का प्रयास किया। मैंने देश भर के सरपंचों को पत्र लिखा, ग्राम प्रधान को। मैंने ग्राम प्रधानों को लिखा कि पानी बचाने के लिए, पानी का संचय करने के लिए, वर्षा के बूंद बूंद पानी बचाने के लिए वे ग्राम सभा की बैठक बुलाकर गांव वालों के साथ बैठकर के विचार विमर्श करें। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इस कार्य में पूरा उत्साह दिखाया है और इस महीने की 22 तारीख को हजारों पंचायतों में करोड़ों लोगों ने श्रमदान किया। गांव गांव में लोगों ने जल की एक एक बूंद का संचय करने का संकल्प लिया। आज मन की बात कार्यक्रम में मैं आपको एक सरपंच की बात सुनाना चाहता हूं। सुनिए झारखंड के हजारीबाग जिले के कटक मसांडी ब्लॉक की लुपुंग पंचायत के सरपंच ने हम सबको क्या संदेश दिया है।
1: हमारा नाम दिलीप कुमार रविदास का है। पानी बचावे ले जब प्रधानमंत्री हमनी के चिट्ठी लिखल थी तो हमनी के ये विश्वासे ना हो लगल कि प्रधानमंत्री हमनी के चिट्ठी लिखा थी। जब हमनी 22 तारीख के गाँव के लोगों के इकट्ठा करके प्रधानमंत्री के चिट्ठिया पढ़ के सुने लिए तो गाँव के लोगों ने बड़ी उत्साहित भेल थी और पानी बचावे खातिर तालाब के सफाई, नया तालाब बनावे ले, श्रमदान करके अपन अपन भागीदारी निभावे ले गाँव के लोगों ने

0: तैयार भेलथिन। बारिश से पहले ये उपाय करके हमनी के आगे दिक्कत पानी के लिए ना होता है। ये अच्छा रहले कि हमनी के प्रधानमंत्री हमिन के ठीक समय में आगाह कर देलथिन।
1: बिरसा मुंडा की धरती, जहाँ प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना संस्कृति का हिस्सा है, वहाँ के लोग एक बार फिर जल संरक्षण के लिए अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मेरी तरफ से सभी ग्राम प्रधानों को, सभी सरपंचों को उनकी सक्रियता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश भर में ऐसे कई सरपंच हैं जिन्होंने जल संरक्षण का बेड़ा उठा लिया है। एक प्रकार से पूरे गांव का ही वो अवसर बन गया है। ऐसा लग रहा है कि गांव के लोग अब अपने गांव में जैसे जल मंदिर बनाने के स्पर्धा में जुट गए हैं। जैसा कि मैंने कहा, सामूहिक प्रयास से बड़े सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। पूरे देश में जल संकट से निपटने का कोई एक फॉर्मूला नहीं हो सकता है। इसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है और वह है पानी बचाना, जल संरक्षण। पंजाब में ड्रेनेज लाइन्स को ठीक किया जा रहा है। इस प्रयास से वाटर लॉगिंग की समस्या से छुटकारा मिल रहा है। तेलंगाना के थिमाईपल्ली में टैंक के निर्माण से गांवों के लोगों की जिंदगी बदल रही है। राजस्थान के कबीरधाम में खेतों में बनाए गए छोटे तालाबों से एक बड़ा बदलाव आया है। मैं तमिलनाडु के वेल्लोर में एक सामूहिक प्रयास के बारे में पढ़ रहा था, जहां नाग नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 20,000 महिलाएं एक साथ आई। मैंने गढ़वाल की उन महिलाओं के बारे में भी पढ़ा है जो आपस में मिलकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के कई प्रयास किए जा रहे हैं और जब हम एकजुट होकर मजबूती से प्रयास करते हैं तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। जब जन जन जुड़ेगा, जल बचेगा। आज मन की बात के माध्यम से मैं देशवासियों से 3 अनुरोध कर रहा हूं। मेरा पहला अनुरोध है, जैसे देशवासियों ने स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया, आइए वैसे ही जल संरक्षण के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत करें। हम सब साथ मिलकर पानी की हर बूंद को बचाने का संकल्प करें। और मेरा तो विश्वास है कि पानी परमेश्वर का दिया हुआ प्रसाद है। पानी पारस का रूप है। पहले कहते थे कि पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। मैं कहता हूं पानी पारस है और पारस से, पानी के स्पर्श से नवजीवन निर्मित हो जाता है। पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए एक जागरूकता अभियान की शुरुआत करें। इसमें पानी से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताएं, साथ ही पानी बचाने के तरीकों का प्रचार प्रसार करें। मैं विशेष रूप से अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों से जल संरक्षण के लिए इनोवेटिव कैंपेन्स का नेतृत्व करने का आग्रह करता हूँ। फिल्म जगत हो, खेल जगत हो, मीडिया के हमारे साथी हो, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हो, सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हो, कथा कीर्तन करने वाले लोग हो, हर कोई अपने अपने तरीके से इस आंदोलन का नेतृत्व करें। समाज को जगाएं, समाज को जोड़ें, समाज के साथ जुटें। आप देखिए, अपनी आंखों के सामने हम परिवर्तन देख पाएंगे। देशवासियों से मेरा दूसरा अनुरोध है, हमारे देश में पानी के संरक्षण के लिए कई पारंपरिक तौर तरीके सदियों से उपयोग में लाए जा रहे हैं। मैं आप सभी से जल संरक्षण के उन पारंपरिक तरीकों को शेयर करने का आग्रह करता हूं। आप में से किसी को अगर पोरबंदर पूज्य बापू के जन्म स्थान पर जाने का मौका मिला होगा, तो पूज्य बापू के घर के पीछे ही एक दूसरा घर है, वहां पर 200 साल पुराना पानी का टंका है और आज भी उसमें पानी है और बरसात के पानी को रोकने की व्यवस्था है। तो मैं हमेशा कहता था कि जो भी कीर्ति मंदिर जाएं, वो उस पानी के टंके को जरूर देखें। ऐसे कई प्रकार के प्रयोग हर जगह पे होंगे। आप सभी से मेरा तीसरा अनुरोध है, जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों का, स्वयंसेवी संस्थाओं का और इस क्षेत्र में काम करने वाले हर किसी का, उनकी जो जानकारी हो उसे आप शेयर करें, ताकि एक बहुत ही समृद्ध पानी के लिए समर्पित, पानी के लिए सक्रिय संगठनों का, व्यक्तियों का एक डेटाबेस बनाया जा सके। आइए हम जल संरक्षण से जुड़े ज्यादा से ज्यादा तरीकों की एक सूची बनाकर लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करें। आप सभी #जनशक्ति4जलशक्ति # का उपयोग करके अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे और एक बात के लिए भी आपका आभार व्यक्त करना है और दुनिया के लोगों का भी आभार व्यक्त करना है। 21 जून को फिर से एक बार योग दिवस में जिस सक्रियता के साथ, उमंग के साथ, एक एक परिवार की तीन तीन चार चार पीढ़ियां एक साथ आकर के योग दिवस को मनाया, होलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए जो जागरूकता आई है उसमें योग दिवस का महत्व बढ़ता चला जा रहा है। हर कोई विश्व के हर कोने में सूरज निकलते ही अगर कोई योग प्रेमी उसका स्वागत करता है तो सूरज ढलते की पूरी यात्रा है। शायद ही कोई जगह ऐसी होगी जहां इंसान हो और योग के साथ जुड़ा हुआ न हो। इतना बड़ा योग ने रूप ले लिया है। भारत में हिमालय से हिंद महासागर तक, सियाचिन से लेकर के सबमरीन तक, एयरफोर्स से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक, एसी जिम से लेकर तपते रेगिस्तान तक, गांवों से लेकर शहरों तक, जहां भी संभव था ऐसी हर जगह पर न सिर्फ योग किया गया बल्कि सामूहिक रूप से सेलिब्रेट भी किया गया। दुनिया के कई देशों के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, जानी मानी हस्तियों, सामान्य नागरिकों ने मुझे ट्विटर पर दिखाया कि कैसे उन्होंने अपने अपने देश में योग मनाया। उस दिन दुनिया एक बड़े खुशहाल परिवार की तरह लग रही थी। हम सब जानते हैं कि एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए स्वस्थ और संवेदनशील व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और योग यही सुनिश्चित करता है। इसलिए योग का प्रचार प्रसार समाज सेवा का एक महान कार्य है। क्या ऐसी सेवा को मान्यता देकर उसे सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए? वर्ष 2019 में योग के प्रमोशन और डेवलपमेंट में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड की घोषणा अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़े संतोष की बात थी। यह पुरस्कार दुनिया भर के उन संगठनों को दिया गया है जिसके बारे में आपने कल्पना तक नहीं की होगी कि उन्होंने कैसे योग के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उदाहरण के लिए जापान योग निकेतन को लीजिए, जिसने योग को पूरे जापान में लोकप्रिय बनाया है। जापान योग निकेतन वहां के कई इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग कोर्सेज चलाता है। या फिर इटली की मिस एंटोनिटा रोजी, उन्हीं का नाम ले लीजिए, जिन्होंने सर्व योग इंटरनेशनल की शुरुआत की और पूरे यूरोप में योग का प्रचार प्रसार किया। यह अपने आप में प्रेरक उदाहरण है। अगर यह योग से जुड़ा विषय है तो क्या भारतीय इसमें पीछे रह सकते हैं? बिहार योग विद्यालय मुंगेर, उसको भी सम्मानित किया गया। पिछले कई दशकों से योग को समर्पित है। इसी प्रकार स्वामी राजर्षि मुनि को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने लाइफ मिशन और लकुलेश योगा यूनिवर्सिटी की स्थापना की। योग का व्यापक सेलिब्रेशन और योग का संदेश घर घर पहुंचाने वालों का सम्मान, दोनों ने ही इस योग दिवस को खास बना दिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी ये यात्रा आज आरंभ हो रही है। नए भाव, नई अनुभूति, नया संकल्प, नया सामर्थ्य। लेकिन हाँ, मैं आपके सुझावों की प्रतीक्षा करता रहूंगा। आपके विचारों से जुड़ना मेरे लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है। मन की बात तो निमित्त है। आइए हम मिलते रहें, बातें करते रहें, आपके भावों को सुनता रहूं, संजोता रहूं, समझता रहूं, कभी कभी उन भावों को जीने का प्रयास करता रहूं। आपके आशीर्वाद बने रहें। आप ही मेरी प्रेरणा है, आप ही मेरी ऊर्जा है। आओ मिल बैठ करके मन की बात का मजा लेते लेते जीवन के जिम्मेवारियों को भी निभाते चले। फिर एक बार अगले महीने मन की बात के लिए फिर से मिलेंगे। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।